दिल्ली आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइफ गुड

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: निकट माते दी बहिनी, बिकट माते दी बहिनी, योहो रेडियो दीदी बहिनी।

0: निशुल्क शल्य क्रिया सेवा, अनुभवी आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सक द्वारा उपचार, छार सूत्र लगायत आधुनिक तथा आयुर्वेदिक उपचार पद्धति को सुविधा, दैनिक ओपीडी तथा शल्य क्रिया सेवा,
1: रोग लुकाएर नराखौ, समयमै परीक्षण गरौ।
0: थप जानकारीका लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौँ, फोन 01-4110-6690, 4110-6690।
2: स्वस्थ जीवनका लागि आयुर्वेद अपनाऊ।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: बैंजिक फेमस बिलीव चौधरी एटीएम मोबाइल दे इंटरनेट बैंकिंग गोप्य विवरण आ रही खाई बिले तो माध्यम क्या रे न्यो देप्रे छली जानकारी री विषय न्यो कॉल करो चमई न्यो ठगदिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो देप्रे विवरण री विषय बैंक दे नील परिमो न्यो ताने सतर्क तना ठगदिल क्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्या ले जनहितरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई
2: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

0: अब रारा चाउचाउ ब्राउन चिकन ब्राउन भेज र रारा चीज बल्स मा पनि उपलब्ध छ।
1: अनि तयो कागज के मेथि वा अ झिल्काई के पर्सनल नम्बर ब्लक लै वदि पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनीयो टेलिकमर बे अफिस तरी आइर ब्लक लै र खलखाई अनि बैंगरी बैंगरी अ चर्चै तले लगपर्दि चम्नल पति न आफैन मोबाइल नम्बर फेर दिया बदेर ब्लक तयाई विषय आफैन ब्याङ्क देबिनि जानकारी पिन परिम दे आफैन ब्याङ्क खातैन जानकारी अरुइन योरी थोनी दक्या सचेत तल परिम
2: सतर्क तन ठगी तब्द क्या जोगिना
3: सिद्धार्थ ब्याङ्कर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।
5: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज।

0: अब रारा चाउचाउ ब्राउन चिकन, ब्राउन भेज र रारा चीज बल्स मा पनि उपलब्ध छ।
1: अनि तयो कागज के मेथि वा अ झिल्काई के पर्सनल नम्बर ब्लक लाई वदि पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनीयो टेलिकमर बे अफिस तरी आइर ब्लक लाई र खलखाई अनि बैंगरी बैंगरी अ चार चाहिँ तली लग पर्दि सम्नल पति न आफैन मोबाइल नम्बर फेदी अब दिएर ब्लक तयार विषय आफैन ब्याङ्क दे पनि जानकारी पिन पर्यम दे आफैन ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थोनी बेक्या सचेत तल पर्यम
2: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगिना
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक घाम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीना में वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सबै अस्त्र को शक्ति बोके को 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपया में साथ में IPTV मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन् क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास
1: 99.4 रेडियो थाहा संचार स्टुडियो टाइम
0: इट्स 9 p.m.

पानी जीवन को आधार हो तर स्वच्छ पानी स्वस्थ जीवन को आधार। हिमालयज अन टप लाङटाङ हिमाल को स्वच्छ प्राकृतिक पानी अब तपाई को हाथ में। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर को अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित अन टप ब्रांड का पानी 500 देखि 900 मिलीलिटर का आकर्षक पेट बोतल उपलब्ध छ। थप जानकारी का लागि हिमालयज स्प्रिंग वाटर प्राली नया बानेश्वर काठमाडौं फोन 4781-171-4780-724 वा हिमालयजवाटर.com.np लॉगिन गर्नुहोस्।